0: Get ready to move.
1: It's all about the beats.
2: Wow, FM.
3: Only Tune Super Hit Channel.
4: Fizz on 97.1 FM.
5: It's commercial time.
6: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
7: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
8: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
7: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
8: मुगल बिल्डर्स?
7: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
9: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
7: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
9: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
7: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

0: देखिए नई ड्रामा सीरियल खुश नसीबी 24 मार्च से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर।
1: Turn it up, Radio Faza 97.1 FM.

0: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए। गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी। स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एक्सप्रेस पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ हरियाणा सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7-7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
6: This is a public service announcement.
7: Everybody. The station.
8: That plays
9: foot tapping music.
10: Hazar 97.1 FM.
11: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप।
12: You are listening 97.1 FM.

You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
2: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
3: We're not having that, are we?
2: No. Oi, hear that? It's water and cans.
4: And fix those drips and drops.
5: And take shorter showers, yeah?
4: Because when we work together, it all adds up.
5: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
7: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
8: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
7: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
8: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
7: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
8: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
9: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
7: Park Foods, जो नाम है मायार का।
10: Ready to move.
11: It's all about the beats.
12: Wow, FM.
13: Only tune Super Hit Channel.
14: Fizz on 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention!
3: Property owners and letting agents, are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG24LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: Get ready to move.
9: It's all about the beat.
10: Wow, FM.
11: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays.
3: Foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: Rosyth Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyth Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyth Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyth-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyth Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि ओ हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राबता किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करे।
5: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
6: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
7: 97.1 FM।
8: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए। गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी। स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 0759315066 9। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
6: It's music never sounded better.
7: Fazan 97.1 FM.
8: I love it.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
2: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
3: We're not having that, are we?
2: No. Oi, hear that? It's water and cans.
4: And fix those drips and drops.
5: And take shorter showers, yeah?
4: Because when we work together, it all adds up.
5: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
6: Are you looking for help in English, maths and science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level maths, physics, chemistry and biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
7: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
8: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
7: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
8: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
7: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
8: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
9: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
7: Park Foods, जो नाम है मायार का।
10: Zabardast hits.
11: Music never sounded better.
7: Fazan 97.1 FM.
11: I love it.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station. That plays
2: foot tapping music.
3: Hazar 97.1 FM.
4: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
5: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services, looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham. Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
6: Attention!
7: Property owners and letting agents, are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
8: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
9: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
8: सलासा ट्यूशन सेंटर?
9: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
8: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
9: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
8: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
10: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
11: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
12: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन।
13: यू आर लिस्निंग 97.1 FM।
14: नॉनस्टॉप हिट्स, नॉनस्टॉप एनर्जी, रेडियो फजा 97.1 FM।
15: You are playing. We are playing.
16: Fazan 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM.
1: आई लव इट.

0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: तू सर।
1: इट्स कमर्शियल टाइम।
2: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
2: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
3: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
11: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ,
3: भंगड़े पाओ। आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि ओ हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

Turn It Up, Radio Faza 97.1 FM.

0: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: Hit music.
3: Back to back.
4: मंगला जो भी मंगना मिल जुगा
5: जो मंगना सी वो तो मिल गया।

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राब्ता किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करे।
5: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
6: द स्टेशन
7: दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
8: हजार 97.1 FM।
9: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए। गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी। स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
6: This is a public service announcement.
7: Everybody. The station.
8: That plays
9: foot tapping music.
10: Hazza 97.1 FM.
11: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डैप।
12: You are listening 97.1 FM.

तन्हाइयों में जाने दे, अब मुझ पे जो गुजर रही तुम्हें तो कोई खबर नहीं, तेरे तरीके ही करें बेनकाब तुझे, दिले बेताब करे बेजार मुझे, दिल बंजर कोई जिंदा शजर नहीं, चंद यार ही अब दिखे मेरे साथ मुझे, पढ़े जहन मेरा समझ के किताब मुझे।

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर. फजान 97.1 FM.
2: आई लव इट.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
2: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
3: We're not having that, are we?
2: No. Oi, hear that? It's water and cans.
4: And fix those drips and drops.
5: And take shorter showers, yeah?
4: Because when we work together, it all adds up.
5: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
7: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
8: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
7: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास?
8: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
7: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
8: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
9: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
7: Park Foods, जो नाम है मायार का।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

बस उलझन है साथ मेरे, नींद कहाँ आएगी। सुबह की किरण न जाने कौन सा संदेश लाएगी, रिमझिम सी गुनगुनाएगी या प्यास अधूरी रह जाएगी।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention!
3: Property owners and letting agents, are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: Get ready to move.
9: It's all about the beat.
10: Wow. You are listening 97.1 FM.

सॉल इसी के साथ साथ बताइएगा वीकेंड कैसा गुजरा, कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, कौन आया कौन नहीं आया और किन प्यारों का इंतजार था जिनसे आप मिल नहीं पाए और कहाँ जाने का प्लान था जो कैंसिल हो गया। लेकिन है कोई बात नहीं क्योंकि बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और बताइएगा जो लोग कामकाज की तरफ निकल आए आपका दिन कैसा गुजरा है। आई नो के मुश्किल जो है दिन होगा, बट ऑफिस में आते साथ अगर थोड़ी सी अनबन होगी बॉस के साथ तो घबराने की कोई बात नहीं है।

0: जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों पर रेडियो 97.1 FM के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च आज की, जहाँ पर मेरा आपका साथ रहता है ठीक है ठीक 2 बजे तक। सवाल इसी के साथ साथ आपसे गपशप का सिलसिला जारी रहेगा। प्रोग्राम में एक छोटा सा ट्रैक शामिल किया था, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ट्रैक पसंद आया होगा। तो उसी के साथ साथ बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। हमारा जो आज का टॉपिक है बिलीव इन योर सेल्फ, सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो है वो डिस्कस स्टार्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रोग्राम में जो है वो कमर्शियल ब्रेक का समय है। और अगर मैंने टॉपिक को स्टार्ट कर दिया फिर वही बता देती है जब गपशप करने का मजा आने लग जाता है, तो प्रोग्राम में जो है कमर्शियल ब्रेक हाल हो जाती है। लेकिन आप यूँ कर सकते हैं कि अगर आप इसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन अपनी भी मुझ तक पहुँचाना है तो मुझे लाजमी बताइएगा, पहुँचाइएगा। घर बैठिए वो 3 बजे सुन लिए, बताइएगा कि आप मुझे क्या करते वक्त सुन रही हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप हम तक पहुँचाना चाहें तो वो भी पहुँचाइएगा, या फिर यूँ कह दें कि अगर रेसिपी के हवाले से, खाने के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं वो भी आपको बताऊँगी। और जो लोग मुझे ड्राइव करते वक्त सुन रहे हैं, बी सेफ बी क्यूब एहतियात से ड्राइव कीजिएगा। और साथ ही में अगर पीछे बैक सीट पर पैसेंजर बैठे हुए हैं तो अगर उनकी फरमाइश पे कोई ट्रैक, कोई भी कोटेशन पर प्रोग्राम शामिल करवाना चाहे तो मुझे वो भी बता दीजिएगा। आज का जो टॉपिक है हमारा जी वो है बिलीव इन योर सेल्फ, सो इसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो है वो प्रोग्राम में कमर्शियल ब्रेक का समय होगा और कमर्शियल ब्रेक के उस पार पे हम आपसे जुड़े रहेंगे। इस टॉपिक के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन आप मुझ तक पहुँचाएंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें मुझे ही पता हूँ। कभी कभार कुछ बातों का मुझे नहीं होता और कभी कभार कुछ बातें आपको नहीं मालूम होती। सो इसी तरह सिलसिला चलता रहता है कि मैं अपनी बातें आप तक पहुँचाती हूँ और अपनी बातें आप मुझ तक पहुँचाते हैं। और फिर यकीन जाने कि जब आप किसी से कोई बातें अगर सुनने को मिल रही है, सीखने को मिल रही है तो उसे सीख लें। कभी कभार ऐसा होता है कि आप कभी किसी महफिल में बैठे होते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें जो हैं वो काम आती हैं। और फिर उस बेगानी महफिल में जब उस इंसान का जिक्र होता है ना कि जिससे उसने बातें सीखी होती है, तो यकीन जाने के बड़ी फ़ख्र की बात होती है। सो अभी दिन बहुत अच्छा चल रहा था मेरा, लेकिन अचानक जो है वो होता है ना कभी कभार, जब आप सुनते हैं, जब आप अपनी तरफ से 100% परफेक्ट होते हैं लेकिन अगला जो है वो आपको गलत समझता है, तो वो वाला सीन जो है ना हो जाता है ना, तो थोड़ा दुख हो जाता है। सो दिन बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन हो गया थोड़ा सा अपसेट, बट अभी आपका साथ होगा मेरे साथ तो मेरा दिन बेहद अच्छा होगा। अभी प्रोग्राम की तरफ नहीं बढ़ते बल्कि एक छोटी सी ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। इसके सवाल मेरी रहेगी आपसे मुलाकात।
1: It's commercial time.
2: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
2: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
3: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210792।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
2: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
2: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
2: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

जी हाँ, तो वन सेकेंड वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनती समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च आवाज, आप सुन रहे हैं सर राज की, जहाँ पर मेरा आपका साथ आया था ठीक और ठीक 2 बजे तक। सो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर यकीन। सो खुद पर यकीन का मतलब ये है कि इंसान अपनी सलाहितों, मेहनत और काबिलियत पर भरोसा रखे। ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए खुद एतमाद बहुत ज़रूरी होती है। हमें मुश्किलात और नाकामियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी गलतियों से सीखकर दोबारा कोशिश करनी चाहिए। हाँ, अगर हम अपने मकसद पर तवज्जो रखें, मेहनत करें और हिम्मत ना हारें, तो हम अपने ख्वाब जो हैं वो पूरे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हिम्मत हार जाएंगे, अगर हम अच्छा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अपनी मंजिल के करीब होते हैं, लेकिन सीन ऐसा क्रिएट हो जाता है कि जब हम अपनी गोल्स, अपने प्लान किसी के साथ शेयर कर देते हैं ना, तो बहुत से ऐसे लोग भी मिलते हैं जो आपको बोलेंगे कि आप गुड, आप कर सकते हो। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी मिलेंगे जो नेगेटिव बातें करेंगे कि ना, उनकी तुमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। सो जब कोई नेगेटिव इंसान, नेगेटिविटी कहीं पर फैल जाए ना, तो फिर वो फैल ही जाती है। फिर जब आप अपने दिमाग में इस चीज़ को ज़्यादा सोचेंगे कि मैं वाकई नहीं कर सकता, तो फिर आपका दिमाग पकड़ कर वही चीज़ें आपके दिमाग में लाएगा। सो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत करीब पहुँच कर मंजिल के यू टर्न ले लेते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको ये करना चाहिए कि जब आप अपनी किसी मंजिल को हासिल करना चाहते हैं, किसी जगह पर बढ़ना चाहते हैं, तो उस चीज़ को सिर्फ अपने तक कायम रखें, सिर्फ अपने तक महदूद रखें, ना कि सबके साथ उसको शेयर कर दें। अपनी सलाहियतों पर जो है वो एतमाद रखें, नाकामियों से ना घबराएं, अपनी गलतियों से सीखें, दूसरों से जो है वो अपना मुआवजा ना करें, अपनी बराबरी जो है वो किसी के साथ ना करें। आप जहाँ पर आप हैं, मे भी शायद वहाँ पर अगला ना हो, जहाँ पर अगले वहाँ पर शायद आप ना हो। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं उस तरह नहीं हूँ, फाइनेंशियली सेट या किसी भी तरह से नहीं हूँ, तो अगला जो है वो बहुत अच्छा है। मे भी शायद हो सकता है कि जो सुकून आपके पास है वो उसके पास ना हो। सो अपने मकसद के लिए मुसलसल जो है वो मेहनत करते रहें, मुश्किलात में भी ना घबराएं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि खुद पर यकीन कामयाबी की पहली सीढ़ी ही होती है, और जब इंसान खुद पर यकीन रखता है ना, तो वो मुश्किलात और मुश्किल कामों को भी कोशिश और मेहनत के साथ जो है ना आसान बना सकता है और बना लेता है वाकई में। जब आप सोचते हैं ना कि ये काम तो छोटा सा, बेशक वो काम बहुत बड़ा, तो वो छोटा ही लगेगा आपको। खुद पर यकीन इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। जब हम अपनी जो है काबिलियत और सलाहियतों पर जो है वो यकीन रखते हैं ना, तो हम मुश्किल हालात का मुकाबला ज़्यादा हौसले से कर सकते हैं। सो ज़िंदगी में जो है वो कामयाबी हमेशा आसानी से नहीं मिलती, कभी कभार बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और मुश्किल का सामना करना पड़ता है कामयाबी की तरफ बढ़ने के लिए। इसके लिए जो है ना, मेहनत, सब्र और मज़ीद मेहनत करना वो बहुत ज़रूरी होता है, और मायूसी की तरफ जाना ये बहुत हर चीज़ ख़राब कर देता है। अगर आप मायूस हो जाएंगे तो फिर आप उस चीज़ को कभी नहीं कर पाएंगे। कभी कभी हमें नाकामियों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन नाकामी का मतलब ये नहीं है कि हम कामयाब नहीं हो सकते। हमें अपनी गलतियों से जो है वो सबक सीखना चाहिए और दोबारा कोशिश कर लेनी चाहिए। कभी कभार जरूरी नहीं है कि मतलब एक दफ़ा अगर आप हार गए तो दोबारा भी ये सीन हो जाएगा, नो। एक दफ़ा होता है, दो दफ़ा होता है, लेकिन तीसरी दफ़ा इंसान जो है उस सीढ़ी को पार कर ही लेता है। दूसरों की बातों से मायूस होने की बजाय हमें अपनी जो है अपने मकसद पर तवज्जो देनी चाहिए। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसी सलाहियत होती है, ज़रूर होती है। ज़रूरत जो है वो सिर्फ इस बात की है कि हम जो है उसे पहचान नहीं पाते। हम बेहतर बनाने के लिए उसको और मेहनत करनी शुरू कर देते हैं, बेशक हम बेहतर होते हैं, फिर भी हम और कोशिश करने लग जाते हैं। आखिर में हमेशा जो है वो हमें ये याद रखना चाहिए कि खुद पर यकीन जो है ना, मेहनत और हिम्मत इंसान को अपने ख्वाब पूरे करने के करीब ले जाती है। अगर आप में हिम्मत है तो आप हर चीज़ को जो है पार कर सकते हैं। खुद पर यकीन का मतलब है कि हमें अपनी सलाहियतों और काबिलियत पर एतमाद होना चाहिए। ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए सिर्फ ज़हीन होना काफ़ी नहीं होता, कभी कभार जो है वो खुद पर एतमाद, मुसलसल मेहनत करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम खुद पर यकीन रखें तो हम बड़े से बड़े मकसद को जो है वो हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हमें खुद पर यकीन हो तो रस्ते में मुश्किलात और नाकामियाँ तो सिर्फ जो है वो वक्ती तौर पर आती हैं, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। मेरी पर्सनल राय है कि हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। नाकामी जो है वो हमें ये सिखाती है कि हम
کہاں جو ہے وہ بہتری کی ضرورت ہمیں ہے, کہاں سے ہم کہاں پہ آ سکتے ہیں, جو غلطیاں ہم نے پہلے کی ہیں وہ ہم دوبارہ نہ دہرائیں. کامیاب لوگ جو ہیں مشکلات کے سامنے جو ہے ہمت نہیں ہارتے. سو آپ کا مائنڈ اگر آپ کا ساتھ دیتا تو آپ کوئی بھی منزل پار کر سکتے ہیں, بلکہ ہر بار جو ہے پہلے سے زیادہ محنت کر سکتے ہیں. ہمیں بھی جو ہے اس چیز کے لیے جو ہے دوسروں سے اپنا معذرہ نہیں کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے پر توجہ دینی چاہیے. سو ہمیں جو ہے نا ہمیشہ اچھی سوچ رکھنی چاہیے اور اپنے آپ سے جو ہے یہ کہنا چاہیے کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں. اگر ہم محنت, صبر اور خود پر اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں گے نا تو کامیابی حاصل کرنا جو ہے وہ ممکن ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ پھر کامیابی آپ کے قدم خود چومے گی. سو سامعین, خود پر یقین رکھیں, محنت کریں, اپنی ہمت مت ہاریں, اور سب سے بڑی بات کامیابی کے لیے کہ دوسروں سے جو ہے نا وہ کبھی بھی حسد نہ کریں, دوسروں کی کامیابی کو دیکھ کبھی یہ نہ بولیں کہ اس سے کافی کاش میں ہوتا. سو حسد جو ہے نا وہ بہت بری چیز ہے. اگر آپ کسی کے بارے میں برا سوچیں گے, کسی کو دیکھ کے کوئی رائے رکھیں گے, تو آپ کے ساتھ کبھی بھی اچھا نہیں ہوگا. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنے مقصد کو حاصل کریں, لیکن اس کے پیچھے اس چیز کا خیال رکھیں کہ اس کے پیچھے کبھی بھی کسی کی ناکامی نہ چھپی ہو. تو سامعین, خود پر یقین انسان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے. اگر ہم اپنی قابلیت پر اعتماد, ہمیں اپنی قابلیت پر اعتماد ہو تو ہم مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں, ہم مشکل کام بھی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. زندگی میں مشکلات اور ناکامیاں آتی رہتی ہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن ہمیں کبھی جو ہے نا وہ ہمت ہار جاتے ہیں, لیکن ہمت ہارنی نہیں چاہیے. ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور ہر ناکامی کے بعد جو ہے دوبارہ کوشش کرنی چاہیے. دوسروں کی باتوں سے مایوس ہونے کی بجائے جو ہے ہم اپنے مقصد پر توجہ دے سکتے ہیں. اگر ہم دینا چاہے, جو انسان خود پر یقین رکھتا ہے نا وہ ہر مقصد کو حاصل کر لیتا ہے, وہ مشکلات کا مقابلہ بھی کر لیتا ہے, ہمت بھی نہیں ہارتا. سو اسی لیے ہمیشہ خود پر یقین رکھیں, کوئی بھی کام کرنے سے پہلے خود پر یقین رکھیں, محنت کریں اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں.

मैं बहुत सी चीज़ें जो है ना वो अपनी ज़िंदगी के रिलेटेड भी आपके साथ शेयर करती हूँ, कि जो जो मेरे साथ, मतलब बाजार सी बात है, इंसान कुछ सोच के तो पहले से बैठा नहीं होता कि ये करना है, नहीं, मेरा अपना जो आइडिया होता है, मेरा जो अपने साथ सीन होता है, जो मेरी अपनी स्टोरी होती है, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और वो माशाल्लाह से जब मैं शेयर करती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी फिर से निकल आती है। बट अभी स्पेसिफिक जो है हम टॉपिक रखे जाते हैं और फिर टॉपिक पे जो है वो डिस्कस की जाती है। हमारा आज का टॉपिक बड़े खूबसूरत सा टॉपिक है, बिलीव इन योर सेल्फ। सो मुझे एक बड़ी खूबसूरत सा मैसेज रिसीव हुआ है कि आपने बड़ा ही खूबसूरत सा टॉपिक प्रोग्राम में शामिल करवाया और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत अच्छी है, बहुत मज़े की है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ट्यून करने का, हमें सुनने का, आपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकालने का। लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन इसी टॉपिक के हवाले से आप मुझ तक पहुँचाना चाहते हैं तो मुझे लाजमी मैसेज कर दीजिएगा। बट अभी के लिए जो प्रोग्राम में बढ़ते हैं एक ट्रैक की जाने में, इस ट्रैक के उस पर मेरी की आपसे मुलाकात। स्टे ट्यून फॉर 97.1 FM एंड डैप। साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। फिर ग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च आवाज आप सुन रहे। आज की सवाल आइए मिलकर ओपन करते हैं इस खूबसूरत लंच बॉक्स को, जिसमें से हमारा टॉपिक जो है वो निकला है कि बिलीव इन योर सेल्फ।

और खुद को अकेला तनहा महसूस करने लग जाते हैं। सो मेरे ख्याल में आपको छोटी मोटी चीज़ों को नहीं ज़्यादा सोचना चाहिए, आपको उस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, जो चीज़ आपके लिए बेहतर है। मेरे से जो है ना, अपने अपने हवाले से बात कीजिए ना, तो कोई बात भी सही नहीं होती। अगर आपके साथ कोई बात शेयर करूँ तो वो बहुत अच्छे से शेयर करती हूँ और इन्फॉर्मेशन बहुत मज़े की होती है। सो खुद पर यकीन इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम सारी ज़िंदगी जो है ना दूसरों को ये यकीन दिलाने में लग जाते हैं कि हम आपके साथ लॉयल हैं, हम आपके साथ खुश हैं, लेकिन खुद को ये यकीन नहीं दिला पाते हैं। खुद के साथ ये धोखा करते होते हैं कि यार हम किस दौर में जी रहे हैं, मतलब जहाँ पे हम दूसरों को हमें यकीन दिलाना पड़ रहा है कि यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, या आई बिलीव यू बिलीव मी कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है। नो, तो हम मैं कभी भी सोचती हूँ कि हम किस जहान में जी रहे हैं कि हमें दूसरों को ये यकीन दिलाना पड़ता है बता के। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं, 80% मैंने लोग ऐसे देखे हैं जो इस तरह के हैं, लेकिन 20% लोग ऐसे होंगे जो आपके ऊपर यकीन करेंगे। लेकिन वो कभी कभार ऐसा होता है ना कि जब आप किसी जगह पे 100% दे रहे हो और आपको उल्टा वहाँ से 100% ना मिल रहा हो, तो फिर इस चीज़ का थोड़ा सा अफसोस होता है। लेकिन अगर आप वहाँ पे 100% देने से खुद पर तवज्जो देना, तो मेरे ख्याल में ये परफेक्ट बात होगी। खुद पर एतमाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे ना कि फ़लाँ बंदा क्या कह रहा है और दूसरा क्या कह रहा है, सो कुछ भी नहीं होता। दुनिया में चार लोगों ने क्या बोल देना है, क्या बोलेंगे, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा। खुद पर यकीन जो है ना वो सबसे पहले होना चाहिए। और जी, अचानक मैंने अपना फ़ोन उठाया और फ़ोन पर एक बड़े खूबसूरत सा मैसेज रिसीव हुआ है, और कुछ लोग हमें सुन रहे हैं बड़ी ही दूर बैठ के, और थैंक यू जी आप हमें सुन रहे हैं। मगर अगर आप ब्याह में अपनी मौजूदगी का एहसास हमें और अच्छे से दिलाएंगे तो हमें ज़्यादा खुशी होगी।

भी जो है सीन कुछ इस तरह से हो गया कि मैंने प्रोग्राम का आगाज किया था किसी और की फरमाइश पे, बट इतना तो फर्ज बनता है ना कि मैं अपनी पसंद का भी ट्रैक शामिल कर सकूँ। सवाल अभी मेरे पास गानों की बड़ी लंबी प्लेलिस्ट है, और मज़े की बात बताऊँ आपको कि मुझे ट्रैक ढूंढने में बहुत मसले होते हैं, मतलब जो चीज़ मैंने ढूंढनी होती है वो मुझे मिलती नहीं है। डेली रूटीन पे मेरा 2 घंटे का आपके साथ वक्त होता है, उसके बाद जो भी एक्टिविटी मैं करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो भी ट्रैक सुनती हूँ उसको अपने दरमियान शामिल करती हूँ। बहुत से ट्रैक ऐसे होते हैं जिनको मैं सुनती भी नहीं हूँ और आपके साथ आकर ही सुनती हूँ।

अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ट्रैक लगाऊं तो लगाऊं कौन सा। मतलब मेरी प्लेलिस्ट जो है ना वो थोड़ी सी सैड आ जाती है, तो फिर मैं कहती हूँ कि अगर सैड ट्रैक प्ले कर दिया तो माहौल जो है ना वो सेंटिमेंटी बन जाना है। सो कोशिश यही करते हैं कि कोई मस्त सा ट्रैक ढूंढ लेते हैं। अगर कोई ट्रैक हमें मिल गया तो हम उसका प्रोग्राम में शामिल कर देंगे, और उसी के साथ साथ यूट्यूब ओपन करते हैं। साथ में नज़र पड़ी है बड़ी खूबसूरत ट्रैक की जानब, ट्रैक पर सोल बढ़ते हैं इस ट्रैक की जानब। स्किल्स फॉर मेरी रहेगी आपसे मुलाकात, मे बी शायद इसके स्वाद मेरे आपके दरमियान एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक आज हो जाए। सो स्टे ट्यून फॉर 97.1 FM एंड ऐप, साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440-36-3063 या 07421-077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। यूपीएस से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। कल प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च, जहाँ पर मेरा आपका साथ रहता है ठीक है ठीक 2 बजे तक। बिल्कुल ओपन करते हैं इस खूबसूरत से लंच बॉक्स को, जिसमें ना सिर्फ खाना होता है बल्कि बहुत सी ऐसी बातें छुपी रहती हैं जो आपने मुझ तक पहुँचानी होती हैं, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो मैं आप तक पहुँचाती हूँ, कुछ ऐसी बातें जो आप मुझ तक पहुँचाएंगे। खैर उसी के साथ साथ मेरे ख्याल में टॉपिक काफ़ी ज़्यादा मैं डिस्कस कर चुकी हूँ और तकरीबन मेरे आपके दरमियान वक्त भी काफ़ी कम रह चुका है, और साथ ही में जो है वो बड़ी खूबसूरत सा मैसेज रिसीव हुआ है हम तक। मेरी जो है ना बड़ी खूबसूरत सी लिसनर है, मैं मेरे ख्याल से रोज़ाना इनका प्रोग्राम में मैसेज शामिल करती हूँ। चांदनी जी ने भैया हमें मैसेज किया है, नमस्ते जी। जी नमस्ते, क्या हाल चाल है आपके? हम बिल्कुल ठीक, आप बताइए कैसे मिजाज है, कैसा दिन गुजर रहा है आपका? वेल, कहा गया है कि टॉपिक बहुत अच्छा चल रहा है, उसी टॉपिक के लिहाज से मैं एक छोटा सा मैसेज आप तक पहुँचा रही हूँ कि तजुर्बात हालात से आते हैं, उम्र से नहीं। वाह, दैट्स ग्रेट। उम्र छोटी भी हो ना तो मैनेज हो जाता है, लेकिन तजुर्बात जो है ना वो हालात से ही आते हैं। वाकई में कभी कभार जो है वो इंसान को इतनी गंदी ठोकर लग जाती है ना छोटी सी उम्र में कि वो समझदार बन जाता है। किसी टाइम में जो है ना मैं भी बड़ी मेच्योर थी और मतलब बच्चों वाला बिहेवियर था, बट आहिस्ता आहिस्ता जो है इंसान में चेंजिंग आ जाती है। ज़रूरी नहीं है कि ठोकर ही लगे भाई, ऊपर वाले का कदम है कि कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं हुई, लेकिन तब्दीली जो है ना वो इंसान में खुद ब खुद आ जाती है। जब आप किसी माहौल में एडजस्ट करते हैं ना, तो एडजस्ट करना चाहते हैं तो, या किसी नए माहौल में जाते हैं तो वहाँ पर जाकर तब्दीली आ ही जाती है। और यकीन की बात की जाए ना, तो यकीन जो है ना वो जब आप किसी नई जगह पर जाते हैं वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए, आपको किसी एक ना एक बंदे पर यकीन करना पड़ता है, तभी आप उस जगह पर एडजस्ट हो पाते हैं। और फिर वहाँ पर बहुत से तजर्बात भी ऐसे होते हैं जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं होता, बहुत सी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं जिनके बारे में कभी आइडिया भी नहीं होता। सो ज़िंदगी में जो है ना वो उतार चढ़ाव आता ही रहता है। कभी कभार जो है ना हमें ऐसा फील होता है कि जैसे हम अकेले हैं, बट किसी किसी जगह पर ऐसा भी होता है कि आपके अपने नहीं आपके साथ खड़े होते, कोई गैर इंसान खड़ा होता है, और वो गैर इंसान बहुत लोगों से बेहतर, बहुत लोगों से आगे होता है। और वो कहते हैं ना कि कुछ लोग पास रह कर भी अपने नहीं होते, कुछ लोग जो है वो दूर रह कर भी अपने हो जाते हैं खामोशी से। और इसी तरह जो है ना कुछ लोग जो ज़िंदगी में आते हैं ना वो इंसान को बहुत तब्दील करके रख देते हैं, लेकिन कुछ लोग बीच में ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को खुद चेंज करते हैं दुनिया को देख देख के, हालात को देख देख के। सो ठोकर की बात कीजिए, हालात तजुर्बा अगर देखा तो इंसान को ज़िंदगी में एक ना एक कभी ना कभी एक ठोकर ज़रूर लगती है, और जब इंसान को ठोकर लगती है तो फिर वो कामयाब होता है, समझदार होता है। और मेरे ख्याल में कामयाबी के पीछे ठोकर जो है ना वो मजी बहुत ज़रूरी है। ठोकर नहीं कहा जा सकता उसको, मेरे ख्याल में सबक कहा जा सकता है। वो एक सबक मिलता है इंसान को कि जिस चीज़ से एक दफ़ा गलती हो, जिस चीज़ को लेकर एक दफ़ा गलती होगी उसको दोबारा ना दोहराया जाए बल्कि उससे बचा जाए। हाँ, एक ही चीज़ से बार बार ठोकर खाने वाला इंसान जब बेवकूफ़ ज़रूर होता है, ये चीज़ मैंने कहीं सुनी हुई है। सो हर किसी को जो है ना वो हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, इसीलिए किसी को इनकार करने से ना घबराएं। मैंने अब मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले अपना टॉपिक रखा था कि मुँह पर इनकार करना। सो जो लोग जो है ना वो इनकार कर देते हैं मुँह पर, वो कामयाब हो जाते हैं। मैंने जहाँ तक ये सुना था, शायद ये मैंने स्टोरी आपको पहले सुनाई हो या नहीं, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, भुलक्कड़ सी हूँ और बहुत सी बातें भूल भी जाती हूँ। और मज़े की बात बताती हूँ, वो मैं ज़्यादा देर किसी से नाराज़ नहीं रह सकती, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट हो गए तो बहुत है, इनफ। इससे ज़्यादा जो है ना मैं नाराज़ नहीं रह पाती, और मेरे से जो जुड़े लोग हैं ना उनको इस चीज़ की जो है वो एक किस्म का उनको फ़ायदा है कि मुझे मनाना नहीं पड़ता। तो बल खैर, बात हम कर रहे थे कि समझदारी की, जवाब देना जो है हर जगह ज़रूरी नहीं होता। मैं अक्सर जो मैं सोच समझ के जवाब देती हूँ, मुझे अक्सर कहा जाता है कि तुम बहुत लेट जवाब देती हो, ऐसे नहीं होता हर जगह पे जो है वो ऐसे जवाब नहीं देते, कुछ जगह पे जो है जल्दी से जवाब देना पड़ता। तो मेरे ख्याल में सोच के जवाब देने वाला इंसान जो है वो समझदार होता है, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को समझदारी समझते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं इसको बेवकूफ़ी समझते हैं। मैं कुछ दिन पहले गई थी एक जगह, और वहाँ पर जो है वो पूछा गया था कि दुनिया वालों, मतलब आप जॉब की तरफ आए तो आपने क्या सीखा दुनिया में, मतलब क्या चीज़ आपको सही लगी है। तो मेरे साथ एक लड़की थी, मेरी फ्रेंड, उसने फ़ौरन से जवाब दे दिया, मतलब तो मैंने सोच के जवाब दिया, तो मुझे किसी ने कहा कि आपने सोच कर जवाब दिया, ये समझदार है, उन्होंने फ़ौरन से जवाब दे दिया। तो उस
छट से जो है ना पलट कर किसी ने जवाब दिया पीछे से कि नहीं, सोचकर जवाब देने वाला इंसान जो है ना वो समझदार होता है, जल्दी जल्दी जवाब देने वाले इंसान को समझदारी नहीं बेवकूफ़ी कहा जाता है। सो मैं नहीं बोलती किसी को बेवकूफ़, मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरी वजह से कभी भी कोई उदास ना हो, कभी भी किसी की आंखों में आंसू ना आए, कभी भी कोई ये ना समझे सोचे मेरी वजह से कि यार मैं बुरा इंसान हूँ या बुरी हूँ। खैर गपशप आपका साथ जारी रहेगी, मैंने अपना लास्ट एक दिन रखा होता है म्यूज़िक का, और मेरी कोशिश फिर यही रहती है कि म्यूज़िक ही आपके दरमियान शामिल किया जाए, आप तक अपनी नहीं बल्कि फरमाइशों को शामिल किया जाए, जो मेरे पास खूबसूरत खूबसूरत से ट्रैक्स आते हैं उनको प्रोग्राम में शामिल किया जाए।

अभी मैंने जो है ना इस ट्रैक को कभी सुना नहीं है, बट मैंने ये मूवी देखी है क्रिश 3। हाँ, इस मूवी का ये ट्रैक मैंने उस तरह डिटेल से नहीं सुना, बस वो रील्स वगैरह में आ गया तो स्क्रॉल करते हुए फ़ोन सुन लिया। बट अभी आपके साथ इस ट्रैक को सुन लेते हैं, मेरे पास फरमाइश तो मैंने सोचा कि क्यों ना चले लगे आ तो हम भी सुन ही लेते हैं। बल साथ दीजिएगा, साथ होने का फिर से एहसास दिलाइएगा, ट्यून करके रखिएगा 97.1 FM को एंड डैब को।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक, एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडी फॉर 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, जहाँ पर मेरा आपका साथ रहता है ठीक ठीक 2 बजे तक। प्रोग्राम में खूबसूरत सा ट्रैक शामिल किया और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी होगा। वक्त भी काफ़ी कम रह चुका है, रुखसत वक्त चल, क्या कहते हैं ये लाइन मुझे बोलनी नहीं आती। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि इसको प्रोग्राम में बोलूँ, लेकिन मैं बोल नहीं पाती हूँ। तो बहुत से लफ्ज ऐसे होते हैं जो आपकी ज़ुबान पर आते ही नहीं है। वक्त रुखसत शायद होता है, खैर जो भी होता है आप मुझे बताएंगे कि क्या मतलब होता है, क्या वर्ड होता है, मुझे इस नई आइडिया कि उसको किस तरह से बोला जाता है। खैर अभी जो है वो तकरीबन मेरा आपके दरमियान थोड़ा ही टाइम रह चुका है और मेरे पास जो है फरमाइशें कोई इतनी ही ज़्यादा पड़ी हुई है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या शामिल करूँ। अवल अभी जो है वो जाते जाते एक हरी फरमाइश को पूरा कर देते हैं, फिर इसके उस बार फिर मेरी आपसे रहेगी मुलाकात। थोड़ा बढ़ते हैं इस ट्रैक की जानी। अच्छा, मैंने जो पहले गाना लगाया था दिल तू ये बता, उसमें वो लड़की ने कुछ स्टाइल इस तरह से बनाया हुआ था, अभी मुझे अचानक से याद आया। मतलब वो कुछ अलग ही डिज़ाइन बना हुआ है, मतलब मुझे देख के हंसी आ रही थी। अच्छा ही हुआ कि मैंने पहले कभी ये वीडियो देखी नहीं, ये गाना सुना नहीं, बट मुझे बहुत हंसी आई आपस की बात है। आप उसकी वीडियो को, मतलब आप अगर आपने नहीं देखी तो आप उसकी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। खैर अभी बढ़ते हैं हम दीवानी की तरफ। सो दीवानी मस्तानी को सुनकर फिर आपसे चाहेंगे इजाज़त, अभी तक के लिए साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजल 97.1 एफएम के राज स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च वाला, आप सुन रहे हैं सरोज के, जहाँ पर मेरा आपका साथ रहता है ठीक ठीक 2 बजे तक। खैर उसी के साथ साथ अब वक्त हुआ जाता है ख़त्म, अब आपको मुझे देनी होगी इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। कल तक के लिए मेरा और आपका अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।

0: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रापता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM। Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays.
3: Foot tapping music.
4: Huzza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
2: Hold on, miss. 2055? We'll be grown ups by then.
3: We're not having that, are we?
2: No. Oi, hear that? It's water and cans.
4: And fix those drips and drops.
5: And take shorter showers, yeah?
4: Because when we work together, it all adds up.
5: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
8: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
7: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
8: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
7: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
8: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
9: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
7: Park Foods, जो नाम है मायार का।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station.
9: That plays
10: foot tapping music.
11: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ,
3: पंगड़े पाओ। आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्त दा मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट काशिफ समीर और आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM। एंड दैब उम्मीद करता हूं आप सब जो है वो ठीक ठाक होंगे और आपकी जो वीकेंड्स हैं वो बड़ी अच्छी गुजरी होंगी और ढेर सारी अच्छी यादें आपने इकट्ठी की होंगी। कुछ लोगों को वीकेंड्स पे भी काम करना पड़ा होगा क्योंकि निज़ामी ज़िंदगी ऐसा ही चलता है। हम उन्हें सभी लोगों को वेलकम करते हैं जो गाड़ी चलाते हुए हमें सुन रहे हैं और वॉक करते हुए सुन रहे हैं और जो है वो अपने फ्री टाइम में हमें सुन रहे हैं और वो बड़ी लकी लोग हैं जो अभी उनके पास फ्री टाइम है।

0: आज हमारे जो प्रोग्राम है उसका टॉपिक होगा ट्रैवलिंग एंड टूरिज्म।
1: इट्स कमर्शियल टाइम।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रब्ता किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: Get ready to move.
7: It's all about the beats.
8: Wow, FM.
9: Only Tune Super Hit Channel.
10: Fizz on 97.1 FM.

Assalamu alaikum, welcome back in Faza 97.1 FM and Dab. हम सभी अपने लिसनर्स को वेलकम करते हैं अपने इस शो में. ड्राइव जोन इस शो का नाम है और आज हमारा टॉपिक है ट्रैवल एंड टूरिज्म. इस पे जो है दिल खोल के बात होगी और आप लोगों का एक्सपीरियंस भी शामिल किया जाएगा अपने इस प्रोग्राम में. और हमारा जो प्रोग्राम है इसका मेन जो पर्पज़ है वो है एंटरटेनमेंट. और एंटरटेनमेंट के साथ साथ जो है वो इंफॉर्मेशन भी पास ऑन होनी चाहिए. और इंफॉर्मेशन जो बेसिकली एक मुआशरे को जो है वो हेल्दी बनाती है. डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस और इस तरह के तजर्बा जो है वो दूसरे लोगों के लिए बड़े फ़ायदेमंद समटाइम्स साबित होते हैं. अपना एक्सपीरियंस और अपनी जो कुछ यादें आप अपना हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. और उसके लिए हमारा लाइव कॉल नंबर है 0115710971. और इस पे जो है हमारा व्हाट्सएप भी है और इस पे आप जो है अपना कोई मैसेज है वो लिख के भेज सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं. और कुछ लोग किसी को डेडिकेट करना है तो वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है. बिकॉज इट्स फजा 97.1 FM. It's your show. अभी एक बड़ा प्यारा सा सॉन्ग जो है वो ट्रैक प्ले करते हैं अपने शो में. देन इसके बाद जो है हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे ट्रैवल एंड टूरिज्म के ऊपर.

वेलकम बैक। अभी हम एक बड़ा प्यारा सा सॉन्ग था, गुरु रंधावा का पटोला, लौट के आ चुके हैं। अभी हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, ये इसकी हिस्ट्री बड़ी रिच है और बहुत सारे लोग पूरी दुनिया से इसमें ट्रैवल करते हैं। इट इज़ कॉल्ड यूनाइटेड किंगडम। मुझे ये वाली एक आवाज़ है वो बड़ी प्यारी लगती है, उसको बोलते हैं इट्स अ लंडन बेबी। सफ़र जो है इंसानी हिस्ट्री के साथ साथ ही चलता आ रहा है और सफ़र करके ही बहुत सारे जो मतलब क्या कहते हैं सब कॉन्टिनेंट्स और बहुत सारी प्लेसेस जो हैं वो फाइंड आउट की गई थी। और सफ़र का जो बेसिकली एक पर्पज़ है वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है, ट्रेड देता है, और ट्रेड के साथ साथ जो है सफ़र करने से आपकी जो सेहत है वो बड़ी अच्छी रहती है। जब हम अपनी मोनोटोनस रूटीन लाइफ से एक लाइफ में चलते रहते हैं तो हमारा माइंड और हमारी बॉडी जो है वो सम टाइम रिस्पॉन्ड करना जो है वो ज़रा छोड़ देती है, तो हमें रिफ़्रेशमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो रिफ़्रेशमेंट या तो आप सफ़र के थ्रू कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म के थ्रू। जब आप ट्रैवल एंड टूरिज्म पे जाते हैं तो आपके पास आप अपनी सारी जो डेली बेसिस पे आप जो काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उससे हट के आपके पास टाइम होता है। तो वो टाइम सिर्फ जो है वो आपकी अपनी जो रूह, जो जिसको हम सोल बोलते हैं, उसके लिए आपके पास टाइम होता है। आपको अपनी रूह से मिलने का मौका मिलता है और आप लोग जो है वो बड़ा एक जो आपको रिफ़्रेशमेंट बेसिकली जो है वो फील होती है। मैंने तो जो है ना वो डिप्लोमा भी ले रखा है इसमें हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में, और मुझे जो है वो घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है और आप लोगों को भी होना चाहिए। और एक जगह मैंने पढ़ा है कि दुनिया में सबसे जो तेज तरीन जो लर्निंग का वो प्रोसेस है वो है ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग के थ्रू आप बहुत जल्दी चीज़ें सीखते हैं। वो किताबों में जो चीज़ें आप विजुलाइज नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, जब आप ट्रैवल करते हैं तो वो जैसे जैसे डेस्टिनेशंस आती हैं तो वो उनको बाय नेम और बाय सीन आपको वो याद रह जाती हैं। तो कुछ यादें जो हैं आपकी इन डेस्टिनेशन के साथ मुंसलिक हो जाती हैं और वो यादें हमेशा। अभी तो मोबाइल फ़ोन आ गया, पहले वो कहानियों में बच्चों को सुनाई जाती थी कि उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते थे वो उन्होंने फ़लाँ फ़लाँ कंट्री में वो एक वाटर ट्रैवल भी किया है और उसके बाद जो है लैंड ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा किया। तो ये सारी चीज़ें सुनने में बड़ी प्यारी लगती थी। लेकिन आजकल जो सोशल मीडिया का जो है बहुत ज़्यादा इन हो गया और इसमें कोई भी डेस्टिनेशन आपने सर्च करनी है तो वो आपको पूरा मौका मिलता है। बिफोर ट्रैवलिंग जो है आप लोग इसमें आपको उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और लोगों के रिव्यूज़ वगैरह भी पढ़ने को मिल जाते हैं। जब हम स्कॉटलैंड जाते हैं तो उधर जो है वो एक डिफरेंट वाइब है, हमें हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स मिलती हैं और रेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, बादल रहते हैं, तो उसकी एक अपनी वाइब है। और लंदन जो है वो बेसिकली बिजनेस और जो है ओवरऑल सिटी टूरिज्म के लिए बड़ा मशहूर है। डबल डेकर बसेस हो गई, ये बड़ी प्यारी लगती हैं सिटी में, और टेलीफोन बूथ जो है वो ओल्ड वाइब हमें देते हैं। जब हम नए नए आए थे तो हम सारी चीज़ें इंजॉय करते थे, लेकिन इधर जो हम काम करते हैं और बहुत ज़्यादा बिजी हो गए तो अभी ये चीज़ें भी हमें महसूस करने का टाइम नहीं मिलता। क्या आप लोगों को भी ऐसे ही लगता है? और साथ साथ जो है ट्रैवल एंड टूरिज्म पे भी बात होती रहेगी, और इसके साथ साथ जो है आप लोगों की डेडिकेशन है, कोई ट्रैक प्ले करना है तो हम फुली अवेलेबल हैं। एक बड़े प्यारे से सॉन्ग की जो है वो फरमाइश आई है तो उसको भी हम प्ले करेंगे अपने इस प्रोग्राम में।

वेलकम बैक। अभी हमारे पास दो सॉन्ग्स की डेडिकेशन थी और टाइम थोड़ा कम है हमारे पास, और हमारा टॉपिक जो है वो बड़ा दिलचस्प है, तो इसलिए जो है उनको एक साथ प्ले करना पड़ा टाइम को मद्देनज़र रखते हुए। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रैवल एंड टूरिज्म। आज हम इसके बेनिफिट्स पे बात करेंगे कि बेनिफिट्स ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म क्या हैं, और इसका हमारी लाइफ पे, हमारी सेहत पे और हमारी सोचने की जो कैपेबिलिटीज़ है इस पे कैसा असर पड़ता है। जब हम नई जगहों को विज़िट करते हैं तो हमारा जो माइंड है वो मोनोटोनस थिंकिंग से निकल कर जो है वो एक उसको नई चीज़ें देखने को और सोचने को मिलती हैं। जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उन्हें शहर पसंद आते हैं, उनकी रंगीनी, उनकी रोशनियां और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो लोगों को जो है वो ज़्यादा लुभाता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और जो सिटीज़ में रह रहे हैं लोग वो जो है अपने रूटीन लाइफ से जो है वो इन पहाड़ों और जंगलों में रूह कहती है कि बस कहीं निकल जाएं, पहाड़ों की तरफ चले जाएं जहाँ पे हमें कोई काम ना हो और जो है हमारे पास सुकून ही सुकून और टाइम ही टाइम हो अपने लिए और अपने जो है ना बेहतरीन यादों के लिए। मुझे पर्सनली जो ट्रैवल एंड टूरिज़म में जो है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं अपना जो है ना एक टीन एज लाइफ का जो है ना एक किसाब के साथ शेयर करूँगा। जो यादें होती हैं वो हम पैसों से ख़रीद नहीं सकते, आप जितने भी रिच हैं और जितना भी आपके पास एसेट्स हैं लेकिन आप मेमोरीज़ परचेज़ नहीं कर सकते। मेमोरीज़ के लिए उन जगहों पे जाना पड़ता है, और कुछ ऐसी जगह होती हैं जो लाइफ लास्ट जो है ना लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलती हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने दोस्तों के साथ हम इसको प्लान कर रहे थे कि हमने जो है वो टूरिज़्म के लिए कहीं पे जाना है, तो हमारा जो बैकिंग कंट्री वो पाकिस्तान है और हमारा जो तलक है वो पंजाब से है और हमारा जो कैपिटल इस्लामाबाद है, वेरी फेमस प्लेस इन आवर कंट्री फॉर टूरिज़्म। प्लानिंग सारी होगी और तैयारी भी होगी, और हमने बेसिकली बस पे जाना था, और स्टूडेंट्स जो हैं बेसिकली वो फ्री ट्रैवल किया करते थे बाई हुक आर क्रूक इन आवर कंट्री। तो जब हम इस्लामाबाद पहुँचे तो हमारी जो बड़ी फेमस बिल्डिंग है सेंटोरस मॉल, तो हम लाइन में लग गए हैं और वो बेसिकली उनका एम्प्लॉयज़ का आने का टाइम था और हम जो है मैं सबसे आगे था, आई वॉज़ लीडर इन दैट टूरिज़म ग्रुप। आगे गेट पे जो चेकिंग वाले लेडी थी वो खड़ी थी, वो मुझे बोलती हैं कि आप अपना जो है एम्प्लॉय कार्ड दें, और मैंने उसको आईडी कार्ड निकाल के दिया। शी अगेन डिमांड मी फॉर एम्प्लॉय कार्ड, देन आई अगेन प्रोड्यूस माई आईडी कार्ड। वो कहती है कि क्या सीन है, किधर आए हैं आप लोग इतनी जल्दी? मैंने कहा हम घूमने आए हैं। कहने हमें खोल तो लेने दें पहले, फिर आप आइएगा। उन्होंने हमें जो है वो बोला कि आप आधे घंटे बाद आइएगा। और ये जो मूवमेंट था ये बड़ा एक डिसअपॉइंटमेंट और जो है वो एस्टॉनिशिंग था मेरे लिए। तो वो मेरे से जो है एम्प्लॉय कार्ड मांग रही है और मैं उसको आईडी कार्ड दे रहा हूँ। और मैं अपने दोस्तों में थोड़ा सा ज़्यादा एजुकेटेड था, उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा फन बनाया और मुझे कहा कि यार आपको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही थी कि वो बेसिकली डिमांड क्या कर रही है। फिर एक पार्क था, हमने एक घंटा वेट किया उस, वो फर्स्ट टाइम हमने बिल्डिंग विजिट करनी थी, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इसके लिए। दैन फर्स्ट टाइम ने हमने जो है वो लिफ्ट वगैरह देखी और एलिवेटर वगैरह देखे, और हमारे लिए ऐसे ही था कि जैसे हम यूके या इसमें अमेरिका में आ गए हैं। काइंड ऑफ बिल्डिंग है जो बहुत ज़्यादा एडवांस है इन आर कंट्री। फिर उधर जो हमने वो सेंसर वाली टैब्स देखी कि वो ओपन करने वाली टैब्स नहीं थी, और हम कन्फ्यूज़ हो गए जब वाशरूम में गए तो इनको कैसे यूज़ करना है। सुबह का टाइम था और अभी लोग विज़िट करने के लिए भी नहीं आए थे। फिर हम वेट करते रहे, कोई बंदा आए इसको यूज़ करे, देन आपको जो है हमें पता चले कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो उस दिन जो है ना हमने मॉल में जाके एक टेक्नोलॉजी की यूटिलाइजेशन सीखी, और टू ट्रैवल एंड टूरिज्म बेसिकली हमें जो है वो एक न्यू नॉलेज देता है, और न्यू नॉलेज जो है हमारी सोल के लिए और हमारी जो ओवरऑल लाइफ है इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
रूटीन लाइफ जो है हमें जो है ना सोचने में डल बना देती है। आप लोगों को भी चाहिए कि अपनी रूटीन लाइफ से टाइम निकाल के ट्रैवल एंड टूरिज्म को दें, और एक वक्त आए कि जब आप कहीं पे बैठे हो तो आपके पास मेमोरीज हों, ना कि आप लोगों की रील्स वगैरह देखते रहें। कभी आपके पास टाइम हो तो आप अपनी जो फ्लैशबैक जिंदगी है उसमें जाके अपनी मेमोरीज को इंजॉय करें।

0: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्डन किंग रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
6: It's music never sounded better.
7: Fazan 97.1 FM.
8: I love it.

वेलकम बैक। अभी हम लौट के आ चुके हैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एक कमर्शियल ब्रेक से, और ज़रूर आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा अपने सराउंडिंग के लिए। और हमारी हमारी जो एक्सपर्ट मार्केटिंग टीम है वो दिन रात मेहनत करती है आपके बिज़नेस में चार चांद लगाने के लिए। अगर आप भी अपने बिज़नेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 0115710971, आप इधर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारी जो मार्केटिंग टीम है वो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी प्रोमो जो है वो प्रिपेयर करके उसको लॉन्च करेगी, विच विल हेल्प यू इन योर बिजनेस प्रमोशन। आज हम बात कर रहे हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म पे, और मैं जो है अपनी एक स्टोरी जो बता रहा था, पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा था। तो हम जो है वो इस्लामाबाद गए, जो हमारा कैपिटल है इन पाकिस्तान। देन खूब हमने जो है एक नई टेक्नोलॉजिकल जो टावर्स हैं वो देखे और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली कि एलिवेटर कैसे जो है वो लोग ऑपरेट करते हैं, और जो इलेक्ट्रिकल स्टेयर्स हैं वो कैसे चलती हैं और उन पे जो है ना वो कैसे राइड ऑन होते हैं। इट वॉज क्वाइट इंफॉर्मेटिव एंड एंजॉयबल मोमेंट्स वी हैव देयर। देन आई स्टिल रिमेंबर एवरी सीन ऑफ दैट टूरिज्म डे इन माई लाइफ। देन हम जो है वो हमारी उधर कैपिटल में फैसल मास्क है वो बड़ी फेमस है, तो उधर हमने घूमा। फिर उधर से जो है हम जो है वो लेक व्यू पार्क है, पाकिस्तान का बड़ा प्यारा पार्क है, और उसमें बहुत सारे एग्जॉटिक बर्ड्स जो हैं उन्होंने लोगों के लिए रखे हुए हैं और उनकी बड़ी केयर करते हैं, और जो चीज़ें हम किताबों में देखते हैं एज ए स्टूडेंट्स और टीवी पे और रेडियो पे उनके नाम सुना करते थे वो हमें फिज़िकली देखने को मिले। दैन हमने बोटिंग वगैरह की, और उसके बाद एक हमारे पाकिस्तान उधर शक्करपड़ियाँ मोनूमेंट्स हैं जिधर में जिसमें हमारे कंट्री के जो लीडर्स हैं और जो फॉर्मेशन में जिन लोगों ने रोल प्ले किया उनके वो स्कल्पचर्स हैं वो उन्होंने प्लेस किए हुए, हमने वो भी विज़िट किया, और वो जो है बहुत सारी पिक्चर्स उस ज़माने में बनाई, और मुझे वो सारा जो है वो अपना बैकग्राउंड है वो आज टॉपिक के थ्रू वो याद आ गया। तो बेसिकली हम जो है वो मेमोरीज बिल्कुल नहीं खरीद सकते, मेमोरीज के लिए हमें डेस्टिनेशंस पे जाना पड़ता है।

अभी रिसेंट रिसर्च में एक चीज़ शाया हुई है, वो हम सब के जानने के लिए बड़ी ज़रूरी है। जब हम ट्रैवल एंड टूरिज्म के बारे में सोचते ही हैं तो हमें डोपामाइन मिलना शुरू हो जाता है और एक खुशी का जो एक केमिकल है वो हमारे माइंड में रिलीज होता है और हमें इसके बारे में सोच के बड़ा अच्छा लगता है। टूरिज्म जो बेसिकली दिमागी सुकून और स्ट्रेस में कमी के जो है वो बायस बनता है और हमें रोज़मर्रा की रूटीन के काम और दबाव और घरेलू जो हम काम और हमारी जिम्मेदारियाँ होती हैं उससे जो है ना वो हट के कोई और जो है ना एक ऐसी चीज़ करने के लिए हेल्प करता है जिससे हमें खुशी मिलती है। नई जगहों पर जाके हम जो है ना वो टेंशन से हमारा जो है वो वक्ती तौर रब्ता मुनकता हो जाता है और हमारा माइंड जो है वो नई चीज़ें जब देखता है वो उसके बारे में सोचता है और उसी के बारे में प्रोसेस करता है। और ये भी रिसर्च में शाया हुआ है कि खुशी और मुस्बत सोच का बायस बनता है। ट्रैवल एंड टूरिज्म जब हम करते हैं तो बहुत सारे ऐसे जो बेसिकली हम सिटीज़ में रहते हैं सम टाइम जब हम कंट्री साइड विज़िट करते हैं तो हमें जो है जानवरों को बड़ी करीब से देखने को मिलता है और फार्मर्स हम देखते हैं कि वो अपनी लाइफ वो कैसे गुजार रहे हैं और अपनी जो बेसिकली कल्टीवेशन कैसे करते हैं, तो ऐसा वो क्या प्रोसेस होता है जिसकी वजह से फूड प्रोड्यूस करते हैं और वो फूड जो है हमारी पैकेजिंग फॉर्म में हमें मार्केट्स में अवेलेबल होती है और वो देन हम बाय करके अपने वो डाइनिंग टेबल्स पे लेके जाते हैं। उधर जाके हमें ये सारा प्रोसेस सीखने और देखने को मिलता है। जब हम सफ़र करते हैं तो हमें लोगों के नए लोगों के लिबास, उनका जो खाने का अंदाज़ और नए जायके चखने को मिलते हैं और हम देखते हैं कि जो अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री लोग कैसे रह रहे हैं और वो जो मेन सिटीज़ हैं इनके बारे में क्या सोचते हैं, कौन सी ऐसी जो सहूलतें हैं जो उनको मैसर हैं और कौन सी ऐसी जो है वो सहूलतें उनको मैसर नहीं है जिसकी वजह से वो सोचते हैं कि हमें भी शहरों की तरफ रुख करना चाहिए अपनी लाइफ को टेक्निकली बेटर बनाने के लिए। कुछ ऐसी डेस्टिनेशन होती हैं जहाँ पे जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है, जैसा कि हॉस्पिटल्स हो गए और जो अदर पार्ट ऑफ लाइफ को जो बेटर बनाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाते हैं आपके शॉपिंग मॉल्स हो गए, इस तरह की चीज़ें उन जो माउंटेन्स में बेसिकली जो डेस्टिनेशन होती हैं इसके लिए घूमने के लिए वो नहीं होते, लेकिन उन डेस्टिनेशन जो माउंटेन एरियाज़ हैं हम उधर जब घूमने जाते हैं पहाड़ों में तो हमें एक सुकून का आंसर मिलता है, ताज़ी हवा मिलती है और हमें हमारा जो आई व्यू है वो बिल्डिंग्स और जो है इनसे हट के जो है हमें एक दूर तक देखने की जो है ना वो जो एक क्या कहते हैं कि एक मौका मिलता है हम इन चीज़ों को जानने के लिए। इसके साथ साथ जो हमारा मेन पर्पज़ है वो है एंटरटेनमेंट और आप लोगों की रिक्वेस्ट भी बड़ी तेज़ी से आ रही हैं तो एक ट्रैक की जो है वो डेडिकेशन आई है, साथ साथ ट्रैक भी शामिल करते जाएंगे और आप लोगों का एक्सपीरियंस भी शामिल करते जाएंगे कि आप लोगों का जो ट्रैवल एंड टूरिज्म का जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, आपने क्या सीखा, ये सारी चीज़ें अपने इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे।

वेलकम बैक अगेन इन फजा 97.1 FM एंड दैट एंड यू आर लिसनिंग आज हम बात कर रहे हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म पे।

बहुत सारे नए लोगों के साथ बात करने का मौका मिलता है। जब हम नए लोगों के साथ बात करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होता है। अभी जो सिनेरियो आ गया है, हमारी जो बच्चे हैं घर पे और जो करंट सिनेरियो चल रहा है, तो बिल्कुल मूवमेंट ख़त्म हो गई है। पहले हम लोग डाइन इन किया करते थे रेस्टोरेंट्स में, सिटी टूर हो जाया करता था, लेकिन आजकल तो सारा चीज़ें जो है कन्वर्ट हो गई हैं इस पे डिलीवरी पे। हम जो है ना थोड़े से फार्मी फार्मी हो गए हैं। तो आप अगर टाइम मिले तो ये चीज़ आपने वीडियोस देखनी है। एक ब्रायलर मुर्गी है जिसका हम चिकन जो है वो इन दिनों यूज़ कर रहे हैं। तो एक आप जो है वो जंगली फाउल या देसी मुर्गियां जिसको हम अपनी एशियन लैंग्वेज में बोलते हैं, तो उनको देखिएगा कि वो जो है वो सारा दिन जो देसी मुर्गियां हैं वो जो जंगल में भी रहती हैं तो वो बड़ी एक्टिव होती हैं और जो है वो दरख्तों पे भी उड़ के बैठ जाती हैं। और उनकी जो एक्टिवनेस है वो हमें जो है उन्हीं में नज़र आती है, क्योंकि वो घूमती हैं और कह लें कि थोड़ा सा टूरिज्म करती हैं। और हम जो अभी हमारी करंट लाइफ है वो एक ब्रायलर मुर्गी जैसी होती जा रही है। ये मुझे जो है ना एग्जांपल देनी पड़ी है क्योंकि बात में थोड़ा सा वजन डालना था। तो अभी हमारे बच्चे जो हैं हम बिल्कुल भी उनको हम खुद इतने ज़्यादा बिजी हो गए कि हम अपने बच्चों को कहीं पे मूवमेंट नहीं करवा सकते और ना ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए हमारे पास टाइम निकल रहा है। हालांकि ये नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन हमारा जो सोशल मीडिया और मोबाइल का यूज़ है वो बढ़ गया। क्या आप लोगों को भी ऐसे ही लगता है? आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल जो आपके थॉट्स हैं वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और शेयर करने के लिए हमारा जो लाइव कॉल नंबर है वो है 01157100971।

पता नहीं क्यों अंजाम जानते हुए भी मैं हर बार आकाश से मिलने पहुंच जाती हूँ, शायद दिल के हाथों मजबूर होके। एक महीने पहले इसी रेस्टोरेंट में मेरी आकाश से मुलाकात हुई थी। यकीन नहीं होता इतने से वक्त में वो मेरे इतने करीब आ गया है।

Welcome back again in Faza 97.1 FM. And you are listening Drive Time. It was so informative. Commercial break. आज हम बात कर रहे हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म पे और ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है. हेल्थ के बेनिफिट के साथ साथ जो ट्रैवल एंड टूरिज्म है वो एजुकेशनल एंड कल्चरल बेनिफिट्स भी हमें देता है. जो चीज़ें हम किताबों में पढ़ते हैं और उनके बारे में न्यूज़ चैनल्स और इस तरह के मीडियम से हम सुनते हैं, तो जब हम ट्रैवल करते हैं और इनको जब विज़िट करते हैं और देखते हैं, पढ़ने में और महसूस करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. ये बड़ा अलग सा तजर्बा होता है किसी पहाड़ के बारे में पढ़ना और उसको विज़िट करना. और बहुत सारे लोगों को जोग्राफिया और साथ साथ जो है वो उसमें आर्किटेक्चर को बेसिकली करीब से देखने का मौका मिलता है. और जो आर्किटेक्चर होता है उसमें जो सदियों की जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है. बहुत सारे ऐसे कैसल्स यूके में भी हैं जो इनकी हिस्ट्री 200 ईयर 300 ईयर्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं. उधर हम देखते हैं कि उनकी क्राफ्ट्समैनशिप जो है वो उस दौर के जो लोग थे उन्होंने बड़ी महारत से और बिना सरिये के और स्टील और इस तरह की चीज़ों से जो मॉडर्न मटेरियल्स अवेलेबल हैं इनसे हट के एक नेचुरल जो मटेरियल्स अवेलेबल थे उस इरा में उनको यूटिलाइज करके बड़ी ही आउटस्टैंडिंग और शानदार बिल्डिंग्स और इस तरह की चीज़ें बनाई हैं जो हमें आजकल देखने को मिलती हैं. और हमें जो बड़ी इंस्पायर और जो है वो एक सोचने पे मजबूर करती है कि तब इनके पास ऐसी ये सारी टेक्नोलॉजी कहाँ से आई और इन्होंने ये इतनी चीज़ें परफेक्शन के साथ कैसे कर ली. और एजुकेशनल और कल्चरल बेनिफिट के साथ साथ जो है कल्चरल एक्सचेंज जो है वो बड़ी मेन प्रोडक्ट है इसकी टूरिज्म की. जो हमारा जो कल्चर हमारी जो सकाफत होती है वो जो है ना वो एक्सचेंज होती है. जब हम एक बंदा कहीं से किसी दूसरे एरिया में जब ट्रैवल करता है तो वो अपने साथ अपनी पहचान, अपने इलाके की पहचान, लिबास, खुराक और ये फूड और इस तरह की सारी चीज़ें वो जो साथ लेके जाता है. तो जहाँ पर ट्रैवल करता है तो उनके पास वो सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं. जैसे स्कॉटलैंड है तो उसका छोटा सा पहनावा हमारे से डिफरेंट है इधर यूके जो लंदन और मैनचेस्टर वाली साइड से. जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमें बहुत सारे डिफरेंट माइंडसेट के लोगों के साथ मिलने का मौका मिलता है. हमारे अंदर जो टॉलरेंस है वो भी बढ़ती है. और हम जो दूसरे लोगों से जब बात करते हैं तो हमें पॉइंट ऑफ व्यू सुनने और जो है बर्दाश्त करने की भी कैपेबिलिटी इम्प्रूव होती है. हम बहुत सारी चीज़ें लोगों से सीखते हैं नई जगह पे जाके और बहुत सारी चीज़ें लोगों को सिखा कर भी आते हैं. तो इस तरह का टॉपिक जो है वो अपने शो में इसलिए रखता हूँ कि जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो हम फुली फोकस्ड होते हैं और हमारा माइंड जो है वो चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा होता है और उनको जो है रोड पे हर मूवमेंट को जो है एनालाइज कर रहे होते हैं कि इस मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट आने वाला है हमारे ड्राइविंग में. तकरीबन आगे पीछे हमारा सभी जो व्हीकल्स होती हैं उन पर नज़र होती है कि सब लाइन में चल रही हैं. जब हम ट्रैवल करते हैं तो हर बंदे को अपने बिजनेस और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है. जैसा कि मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट से है, मुझे बहुत सारी ऐसी जगह लगती है कि इधर जो है रेस्टोरेंट और होटल होने चाहिए. जब हम लॉन्ग कुछ ऐसी एरियाज हैं वो एक्सप्रेसवे से ट्रैवल कर रहे होते हैं और घंटों जो है वो ड्राइव करते ही जाते हैं कंट्री साइड्स और जो है ओपन लैंड्स हमें देखने को मिलते हैं, तो तब बंदे का दिल करता है कि इधर इस एरिया में स्पेसिफिक पैच में जो है वो एक है होटल या रेस्टोरेंट और रेस्ट एरिया की जो है वो फैसिलिटी होनी चाहिए. लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो फुली फोकस्ड होते हैं वो सिटी सेंटर्स में बिजनेस करने के लिए. लेकिन जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमें लगता है कि इधर होटल और इस तरह की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वाशरूम हो गया, गैस स्टेशन भी होना चाहिए साथ में,
मुझे ऐसा फील होता है। इसके साथ साथ जो है वो टूरिज्म के इकोनॉमिक बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, और हमारी मकामी जो जिस एरिया में आप ट्रैवल करते हैं, या जैसा कि लंदन है और यूके है, यूके में बहुत सारे लोग जो हैं वो बिज़नेस ट्रैवल भी करते हैं, और जो है सिटी ट्रैवल करने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं, और एजुकेशनल जो एजुकेशन के लिए भी पूरी दुनिया से लोग आते हैं इधर, और अपने साथ अपने बैक इन कंट्री का कल्चर भी लेके आते हैं, अपना पहनावा जो बेसिकली वो किस किस्म के ड्रेसेस वो पहनते हैं। हम देखते हैं कि अफ्रीका के लोगों की ड्रेसिंग और तरह की है, और एशियन जो लोग हैं जैसे क्या कह लें, फिलीपाइंस, मलेशिया और इस तरह की जो उस बेल्ट की कंट्रीज हैं उनके लोगों का भी वो फेस वगैरह मिलते जुलते हैं, और उनका पहनावा भी मिलता जुलता है। जब इंडिया पाकिस्तान की बात आती है तो हमारा कल्चर भी मिलता जुलता है, और हमारा जो पहनावा भी है वो भी मिलता जुलता है, और ज़ुबान में भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। जब से आप कहीं पे भी जाते हैं तो उधर उस इलाके में बेसिकली उनका जीडीपी इंक्रीज़ होता है, और वो जीडीपी में इस तरह रोल प्ले करते हैं कि उस उधर के होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्ट और दुकानों से ख़रीदारी करते हैं, तो उस इलाका में एक तो मुकामी लोग जब ख़रीदारी करते हैं तो वो उस इलाके की जो है ना वो बेसिकली पैसे होते हैं। जब बाहर से कोई बंदा ट्रैवल करने आता है, वो जब हम ट्रैवल करते हैं तो इंसानी जो ह्यूमन नीड्स हैं जब वो फुलफ़िल करते हैं, उसमें हमको जो है वो सोने के लिए होटल रूम्स चाहिए होती हैं, खाने के लिए रेस्टोरेंट्स चाहिए होते हैं, और दूसरी अदर जो है हमारी जब हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं सम टाइम इस तरह की इक्विपमेंट्स भी हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो जो लोकल मार्केट है वो बेसिकली बूम पकड़ती है, तो उधर जो है वो एक ना जीडीपी वो स्ट्रांग होती है।

Welcome back again in Faza 97.1 FM and that अभी हम बहुत ही प्यारे से सॉन्ग से लौट कर आ चुके हैं और आज हम बात कर रहे थे ट्रैवल एंड टूरिज्म पे. बड़ा ही एक्साइटिंग सा टॉपिक है. इस पर जितनी बात की जाए उतना कम है और जितना ट्रैवल किया जाए बेसिकली इंसानी सेहत और खुशी के लिए उतना ही कम है. जब हम ट्रैवल करते हैं हमें बहुत सारे नए लोग मिलते हैं और हमारी नई फ्रेंडशिप्स होती हैं और बिज़नेस के आइडियाज़ भी मिलते हैं और इसके साथ साथ जो है हमारी जो हेल्थ इम्प्रूव होती है, हमें नई सिमत मिलती है सोचने के लिए, नए नए आइडियाज़ आते हैं, कल्चरल जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो एक्सचेंज होती है एक दूसरे के साथ.

कभी हमें भी चाहिए कि हमारी गाड़ी उस तरफ हम मोड़ लें जिस तरफ हमें खुशी मिलती है, और खुशी मिलती है रूटीन के हट से, रूटीन से हट के कोई ऐसा काम करने में जिसमें जो है ना हमारा रूह और जो हमारा बॉडी है वो रिलैक्स फील करें। तो ट्रैवल और टूरिज्म में दोस्तों का होना भी बड़ा ज़रूरी है, और दोस्त इकट्ठे मिलना इस दौर में बड़ा मुश्किल हो गया है जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है। अभी हम जो है वो हमें ये नहीं समझ आ रही कि हम अपनी ज़रूरतों के पीछे भाग रहे हैं या ख्वाहिशों के पीछे भाग रहे हैं। तो इसमें जो बैलेंस और इसको इसके जो बीच का डिफरेंस है वो समझना बड़ा मुश्किल हो गया। जब से इंटरनेट और ये सोशल मीडिया आम हुआ है तब से हमें बहुत सारी चीज़ें हमारी जो है पहुँच पे आ गई हैं, इजीली उनको एक्सेस कर सकते हैं और पूरी दुनिया के बारे में जान सकते हैं एक क्लिक के थ्रू। गूगल करते हैं और यूट्यूब पे भी और इस तरह के जो प्लेटफॉर्म हैं उनको यूटिलाइज करके हम बहुत सारी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसको जो है वो एक्सेस कर लेते हैं।

तो ट्रैवल एंड टूरिज़्म में हमें एक खुशी का आंसर भी मिलता है, और खुशी जो है वो बेसिकली ह्यूमन लाइफ के लिए बड़ी अच्छी है। इसके विदाउट हैप्पीनेस हेल्थ को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब हम एक ही रूटीन में चल रहे होते हैं तो हमें एक वक्त आता है कि एनजाइटी होना शुरू हो जाती है और रूटीन लाइफ से हम थक जाते हैं और रूह चाहती है कि कहीं पर भाग जाएं। एक कहते हैं जी टायर बनाने वाली कंपनी थी, तो उन्होंने टायर तो बना लिए, लेकिन मसला ये था कि उन टायरों को यूटिलाइज़ कैसे करवाएं। कहीं पे मैंने पढ़ा है और कंपनी का नाम अभी मेरे जहन में नहीं आता। उन्होंने फिर क्या किया कि पूरी दुनिया में जो है ना वो टॉप क्लास की उस वक्त की 100 साल पहले जो है ना वो नई नई गाड़ियाँ बन रही थी और ये सारा सिस्टम था, तो उन्होंने इन द बिगनिंग ऑफ दैट ईरा जो है ना उन्होंने जो हर कंट्री की जो ट्रैवलिंग साइट से लोकेशन थी उनके बारे में वो आर्टिकल्स छपवाना शुरू किए और लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना शुरू की कि यहाँ फलां जगह है और इसमें ये क्वालिटीज़ हैं, तो हमें जो है ना वो विज़िट करना चाहिए। वो जो देख रहे थे कि एक गाड़ी है वो काम पे आती जाती है, जैसा भी लोगों का ट्रैवल था उस वक्त, तो वीकेंड्स पे ये खड़ी रहती है। जब ये वीकेंड्स को भी यूटिलाइज होगी तो जल्दी टायर जो है वो घिसेंगे और न्यू टायर्स जो है वो सेल होंगे। हमें जो भी चीज़ इजीली मिलती है उसके पीछे बहुत ज़्यादा बड़ा माइंडसेट होता है, और माइंडसेट जो है वो बिजनेस के साथ भी कनेक्टेड होता है। और आज जो हम होटल्स की और रेस्टोरेंट्स की रेटिंग देखते हैं तो उसमें जो स्टार लगते हैं वो बेसिकली उसी कंपनी ने ये रेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया था। नाम नहीं बताऊंगा, नाम आप लोगों ने खुद जो है वो सर्च करना है। वो जो स्टार सिस्टम है वो ऐसे ऑपरेट करता है कि मतलब बेसिक फैसिलिटीज़ उससे बेटर फैसिलिटीज़ में से 2 स्टार आ जाते हैं, अगर उसमें और बेटर फैसिलिटीज़ आते हैं तो इस तरह से 3 स्टार होटल और रेस्टोरेंट बन जाते हैं। तो वो जो कंपनी इनको रेट करती है वो बेसिकली टायर बनाती है। काम बंदा जब सोचता है ना कि टायर कटे हुए टूरिज्म के साथ क्या लेना देना, तो इधर वकीलों वाला पॉइंट जो है वो माइंड में आता है कि इस चीज़ का इसके साथ संबंध बहुत गहरा है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है एक वास्को डी गामा थे, वो समुद्र में ट्रैवल किया करते थे। एक दिन कहते हैं कि तो कोई तूफान आया और वो जो है ना वो अपने जो उनका मेन ट्रैक था उससे भटक गए थे, और वो एक ऐसी जगह पे ट्रैवल करते पहुँचे और वो जगह वो उसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थे और बड़ी प्यारी प्लेस थी, उसको आजकल हम USA कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर वो ट्रैवल ना करते तो आज हमें ये कंट्री भी देखने और सुनने को ना मिलती, ऐसा मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक।

आज का शो जो है वो बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव रहा है, और साथ में हम लोगों के जो सॉन्ग डेडिकेशन थी उनको भी हमने शामिल करते रहे हैं। और अभी हमारा जो है जाने का वक्त हुआ चाहता है, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि अपने लिए टाइम निकालें, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए। तो किसी दिन गाड़ी उस सफ़र पर डालें जहाँ पर आपको जो है ना ज़हनी और जिस्मानी सुकून मिले।

ऐसे सफर में जाएं जहां पर आपको जो है ना वो बहुत ही अच्छी यादें मिली हैं और बहुत ज्यादा आप लोग एंजॉय करें। आपका एंजॉय करना आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि जो चीज़ें मेडिसिन और इस तरह की चीज़ों से आपको नहीं मिलती वो आपको ट्रैवलिंग से मिलती हैं। ये मेरा पर्सनल बिलीव है।

आप लोग इंशाल्लाह जो है वो प्लान करेंगे कि अपने दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं जाएं और अपनी ज़िंदगी को हसीन बनाएं। और एक और बात जो है, जब हम बहुत सारे आप अगर बूढ़े लोगों को मिलते हैं तो उनके पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो कहेंगे यार अभी जो है हमारे लिए अभी तो ना जो है वो कोई ट्रैवल कर सकते हैं और ना कोई ऐसी चीज़ है जो कि दुनिया के दूसरे हिस्से में मिलती है तो उसको ले सकते हैं और खा पी सकते हैं। हर चीज़ जो है वो उसका एक टाइम मुतय्यन है। अगर वो टाइम और मौका और वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए तो वो कभी भी दोबारा आपकी जो है ना पहुंच में नहीं आती। इससे पहले कि देर हो जाए तो हम लोगों को जो है ना अपने बेसिकली हम दुनिया में काम करने के लिए नहीं आए, और जब दुनिया में तभी काम करेंगे जब हम मेंटली और जो है ना फिजिकली हेल्दी होंगे। अभी आप लोगों ने अच्छी सी जो है ना एक यूके में डेस्टिनेशन जो है वो उसको सर्च करना है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। अगर आप फैमिली के साथ जाएं तो क्या बात है, अगर फैमिली फ्रेंड्स और अपने पेरेंट्स को बेसिकली अगर अगर आपको टाइम मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, उनको भी साथ लेके जाएं। तो ये चार दीवारों में और छोटे छोटे घरों में रह रह के जो है ना वो बंदे को वैसे ही ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सारी जो है ना वो डिजीज ने हमला मेरे ऊपर कर दिया है। जब हम नई जगह ट्रैवल करते हैं तो हम जो है ना हमें नई सोच मिलती है और हमें बहुत सारा जो है डिप्रेशन हमारा जो है वो ख़त्म हो जाता है। आज का शो यहीं तक था और कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी इसी वक्त।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
2: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
3: We're not having that, are we?
2: No. Oi, hear that? It's water and cans.
4: And fix those drips and drops.
5: And take shorter showers, yeah?
4: Because when we work together, it all adds up.
5: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
7: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
8: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
7: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
8: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
7: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
8: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
9: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152, Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106, Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
7: Park Foods, जो नाम है मायार का।

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, यहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
4: आरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रासिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फिजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।
2: This is a public service announcement.
3: The station
4: that plays
5: foot tapping music.
6: Hazar 97.1 FM.
7: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: ड्रामा सीरियल खुश नसीबी 24 मार्च से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर।
1: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
2: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
1: फजा 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

0: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त।
1: जिवें बदलां दे ओले होया चन्न,
0: ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
2: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
3: Radio Fazan 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
0: बिगर बिगर एंड बेटर बेटर द रेडियो स्टेशन फॉर पीपल हु लव म्यूजिक। 97.1 FM।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station. That plays
2: foot tapping music.
3: Hazar 97.1 FM.
4: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
4: आरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
2: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
3: We're not having that, are we?
2: No. Oi, hear that? It's water and cans.
4: And fix those drips and drops.
5: And take shorter showers, yeah?
4: Because when we work together, it all adds up.
5: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
6: Are you looking for help in English, maths and science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level maths, physics, chemistry and biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
7: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
8: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
7: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
8: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
7: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
8: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
9: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
7: Park Foods, जो नाम है मायार का।
10: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ, अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें, मेरा नाम है रेडियो फजा।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने

है माँ, किसे किसे पुकारिए, किसे किसे पुकारिए, जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
1: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: You are listening to Radio Fazza on 97.1 FM.
7: You are listening 97.1 FM.

0: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
1: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
0: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
1: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
0: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
1: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
0: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
2: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
3: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
8: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
7: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
8: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
7: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
9: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.